0: कागज के मेची वा और झिल्काई कई पर्सनल नंबर ब्लक ली पर्सनल मोबाइल नंबर मे उन्नी टेलीकमर बाई अफिसरी आई र्लक लाई रखाई अनि बैंगरी बैंगरी चर्च तली लगपर्दी चंगल पति न आफैन मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफैन ब्याङ्क देबिनी जानकारी पिन परिम दे आफैन ब्याङ्क खातैन जानकारी अरुइन योरी थनी बेक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो लना खैबै बिनी लिङ खुल्दिउ भन्दा उहिसु सु खन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिगो वेबसाइट ना URL चेक लना आख्यावा घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफै ना पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुए तोय तारी शङ्ख लैदी भिसा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगे तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।